चेत्यावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दान असर दान नाम दान। सचखंड श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधाम जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे माण नितानिया दे तार न्योत्यां डियो सच्चे पिता वाहिगुरु। आप जी दे हजूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। पहले कैंप दिन दी समाप्ति दी अरदास है जी। अगले कल दे सवेर दे दवार नूं चढ़दी कला च रखना अखरवादा काटा पुल चुक माफ करनी सरबाते कार जरास करने सही प्यारे मेल जिन्हां दा मिलिया तेरा नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पै अकाल की तब सब सिखण को हुकम।

हाँ जी, आज ते कैंप दी समाप्ति है। सो मेन गल कि तुसी चॉइसेस लाइफ दिया चंगाई वाल ते बुराई इज योर चॉइस। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर यू इन द लाइट ऑफ व्हाट गुरु साहब टेल्स अस। जिस तरह गुरु साहब सानू सिखाते हैं उस तो बैटर पाथ संसार च नहीं मिल सकता। गुरु साहब पूरी खलकत की बुरियाई नू खत्म करना है। एक दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने तो वह सिखा दे हथों ही खत्म होनी है। किसों बाहरों किसी होर ने नहीं आना। यू गो आर गोइंग टू बी द टॉर्च बेयरर्स ऑफ ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। सो यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। वी जस्ट कैनॉट लैट इट गो। एंड जिन्हों कहें दरिया जड़े होर खेती चख चख आवे जाए सारे दरिया अंदर डुबदे गए तो यू डोंट बी पार्ट ऑफ दोज पीपल हु आर ड्राउनिंग। लर्न टू स्विम एंड लर्न टू अवेकन योर माइंड्स। इन्हें शब्दों अज समाप्ति है। कल सवेरे 10:30 आके फिर तो तुहाडे दर्शन करांगे। विचार वटांदरा होर भी नवे टॉपिक्स भाई साहब जड़े सारे सेवा च लगे भाई करणबीर सिंह जी भाई तरनजीत सिंह जी भाई गुरसागर सिंह ते मनसुख सिंह। देर विल बी नो कपल ऑफ न्यू स्पीकर एज वैल। तो दस्तगीर भाई दस्तगीर सिंह ने अज क्लास लाई। सो इन्होंने सारे ने कल क्लासा लानी है। सो इन्होंने तैयारियां कीतियां काफ़ी। सो टेक उन्होंने कहते लाहा लैके जाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़े उड़ आवे सैकोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया।

जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। सब निदान दस अस्त सिदान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुरजी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतोह जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा। एक दाते

हर अनिक अनेक अनंता तेरी अनिक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहुसिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे श्रेष्ठ सब पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई आसा महला चौथा तू करता सच्यार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन राम रतन पाया

काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझिहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सपर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै, जब कर करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालमा, जानत भेद भेद अर आलमा, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत,

परिणत भिन्न भिन्न तो हिते ती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा एक है रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं पुपा अंडज जेरज से तजकीनी उत्पुज खान बहुन रचदीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा शिग्री स्त्री स्त दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप

दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा

आई दोस्त दोख ते लेहुं बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किल बिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री अस्तु जम भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो याहे, सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए, चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै, चौपाई संबत सत्रह है, सैस पणिजै, अर्ध सैस फुन तीन कही जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा, सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते कौ आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुम्हारो द्वार, बाहे गहे की लादे अस गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुम्हारो द्वार।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना

तेरी तुम मात पिता हम बारिक ते तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गात मेत तुम ही जान बोलो जी वाहे।

0: मन मूस भिला मह गर्भत करतब करत महामुघना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बनिता साजन सुख संबंधप तास्यो मोह बढ़ियो सो कना भोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अघना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत पुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचित पुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना।
1: वाहेगुरु।

मिटत जात बिरख की छारों। दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपारो। श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे

चंचल संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहुबिध जोन भ्रम्यो

0: शिव छंद मुनीश्वर रसक रसक ठाकर गुण गावत इंद्र मनिंदर खोजते गोरख तरण अगन तावत फुन तावत छेद मनुख देव और दानव एक तल एक तिल ताको मर्म न पावत प्रिय प्रभु प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जन ताके दर्श थमावत तिसे त्याग आन को चाह मुख दंत रसन सगल घट जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत तिसे त्याग आन को जाचे मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।
1: माया रंग बिरंग करत प्रम मोह कै कूप गुबार प्रयो है एता गब आकाश न मावत बिस्ता अस्त क्रिमन उद पर्यो है दै दिसताए महाबिख का को पर तन छीन ज्ञान हरयो है जो बन बीत जरार रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मर्यो है अनिक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्भ करयो है प्रेम भगत उधरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है अनिक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख ग्रत गरयो है प्रेम भगत उधरे से नानक कर कृपा

सुकहो टल गुर सेवीऐ अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों गुरु।

भगवती संत वह प्रसाद कथते के आछिज दिसें के आबिज बिसें के आबिज लोकें के आदित सुकें के राजन प्रभा है के धर्मंग तुजा है के जगतन कृति है के छत्रन छत्री है।

0: सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है,
1: ब्रह्मंड सैखल खंड से
0: परते पर है, करुणा कर है,
1: जपा जपे थपा थपे,
0: अद्धा कृत है, अमृता अमृत
1: है, अमृता अमृत है, करुणा कृत
0: है, अद्धा कृत है, तरनी कृत
1: है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है,
0: अद्धा कृत है, अमृता अमृत है,
1: जपा कृत है, अमृता अमृत
0: है, नर नायक है, कल

0: समस्तुल प्रणास
1: अकंजुला नाम में समस्तुल निवासे
0: गामन विभूते समस्तुल स्वरूपे
1: कुकर्म प्रणासी सुतर्म प्रभूते
0: सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणास
1: करिमल गुनिंदा समस्तुल निवासी
0: जाय विभूते गजाय गनी में
1: हरियम करियम करिमुल।

0: प्रसाद सवाई है श्रावक सुत समूह सिदान के देख प्रयोग कर जो जति के सारी देश को देख रहे हो मत कहो न देखत प्राण पति के
1: भगवान की पाए कृपा
0: मत

0: सब देश जान को बाजा डोर में गंदन गारे
1: गुंजत गुणग जान के सुंदर हिंसत ही है राज जारे
0: पहान के पूपत कौन करी नहीं जात बचारे
1: श्रीपत श्री भगवान पते बिन अंत को।

0: श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिखा। भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हलेना हलेंगे। मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया।
1: गाड़े गड़ान को तोड़ना हासू बातन ही तक चार लवैया।
0: साहिब श्री सब को सरनायक जाचक नेक सो एक दिवैया।
1: दानव देव निन्न चाचर पूत पिविक पहान जपेंगे।
0: जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे।
1: उन बार जे तुन पापन के वो फंज खपेंगे।
0: सात समूह पर सन फिरे जग सत्र सबे अब लोक छपेंगे।
1: मानव इंद्र की जंद्र ना बन मान के इंद्र गजेंद्र ना पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे।
0: कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर ना दे तरेंगे।
1: कहां पयो जो दूलोचन मुंड

शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबद कियो चीटी ते कुन चरस धूला सब पर कृपा दृश कर फूला।

तुमरा लखन जाय पसारा केहे बिद सजा प्रथम संसारा अंडज जेरज से तजकीनी उद्भुज खान बहुर रजदीनी सगरी सृष्टि दिखाए चंपव आज जुगात स्वरूप से अंपव पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्टरे तत्काला रिद सिद्ध कर मोसब होई दुष्छा छवै सके ना कोई।

0: आव हो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्या पाईऐ
1: गुरु के राग गाओ सच्ची बाणी
0: कहै नानक सुनो संतो कथ्यो।

लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु पला पाया। भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना। खन्यात की वालों ने की एत मार्ग जाना। कह नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली। जिव तू चला है तिवह चला जिना मार्ग पावहे। जिसनो कथा सुनाया अपनी से गुरुद्वारा सुख पावे। एहो सो

0: दुबार गनी मन गारे
1: पशु नग नागन रातव सर्व समय सब को पति पारे
0: पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम बिचारे
1: दयाल दया ने दोखन देखत है पर देत न हारे
0: दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल डारे
1: खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संहारे
0: पान पाए सके पद्मापत बेद कते अपेद उचारे
1: रोजी राज विलोखत राजक रोग रुहान की रोजी ना टारे
0: कीट पतंग कुरंग पुजंगम पूत पविक पवान बनाए
1: खपे खपे अहमेर न पेव लख्यो परम सिंह परमाए
0: वेद पुराण कतेब कुरान हसे थके कर हाथ न आए
1: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद सिंह शीर्ष पद्मा पद पाए
0: आदनंत गाद द्वैक सुपूत पविक पवान अभय है
1: अंत विहीन अनाथम आप अदाग अदोग अछिद्र अछय हैं
0: लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभ वह है
1: दीन दयाल दयान कर शिरपत सुन

0: पत्र अनेक चलावत काओ तोतन एक न लागन पावे।
1: राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे।
0: की बात कहाँ के सो सो पे पेज बचावे।
1: जंच पुचंग सुदा नव देव पेप तुम्हें सब ही करते आवे।
2: उमकास पताल रसातल जश पयंग सबे सिर ने आवे।
1: पाए सके नहीं पार प्रभाव को नेति नेत है बेद बतावे।
0: हो सके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे।
1: नारद से चतुरानंद से रमिनारिक से सब हो मिल गायो।
0: वेद कतेब न पेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो।
1: पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन त्यायो।
0: ज्ञान तरो तह को मन में जय को अमितो सबे जग शायो।
1: वेद पुराण कतेब कुरान अभेम नृपान सब पछारे।
0: वेद न पायो सक्यो वेद को खेद तह अनछेद पुकारे।
1: नाग न रूप न रेख न रंग न साख न सोग न संग तिहारे।
0: आद अनाद अगाद अद्वैत।

0: एक चित जय एक चिन्त आयो काल फास के बीच न आयो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बसंत की बार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई।
0: करम लिखन ते पाईए ए रुत सुहाई
1: वन त्रिण तिर भवन मोलिया अमृत फल पाई।
0: मिल साधु सुख उपजे लथी सब छाई
1: नानक सिमरा एक नाम फिर बोड़ ना ताई।
0: पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ
1: अपने चरण जपाए।

0: सबे का सवारी है जा तुद पावंदा।
1: हे सास हे करुणा निध मेरी अब है बिनती सुन लीजे।
0: और न मांगत हो तुम ते चाहत हो चित में सोई की जय।
1: जूझ मरे कह साज पतीजे।
0: संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम एह बर दीजे।
1: कर मोहे एह शुभ कर्म ते

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंद सहोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा
1: गुरुदेव सांस बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस्परा
0: तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान वजन परम्परा
1: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा
0: गुरुदेव आज जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा।

सुकहु ढल गुर सेविए, एहनस सहज सुभाए। दर्शन परसिय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। हुवै सिफत खसम दी, नूरे अरसो कुरसो चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दे शाहो,